आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम

0: अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अस आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेश है गांधी चर्चा प्रोग्राम तहत महात्मा गांधी के प्रेरक प्रसंग।

गांधी चर्चा प्रोग्राम तहत हुण तुसी सुन रहे सी महात्मा गांधी दे प्रेरक प्रसंग। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सरवण करते हैं भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

7 बजे तुझे सुनूंगी मुख खबरां। अठ बज के 40 मिनट ते महक पंजाब दी प्रोग्राम पेश किया जाएगा, जिस विच तुसी पंजाबी फिल्म संगीत का आनंद माणोगे। नौ बजे समा रहेगा मुख खबरां दा। नौ बज के 2 मिनट ते शास्त्र संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना तहत चमन लाल पल्ला दा शास्त्रीय गायन सुनोगे, राग देवगिरी बिलावल। सवेरे 9:30 बजे समात फरमाओगे चंद गजलां। दस बजे समा रहेगा मुख खबरां दा। दस बज के 2 मिनट ते तुसी सुनोगे हैलो फरमाइश प्रोग्राम। प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी दा समा रहेगा 11:05। बारह बज के 5 मिनट ते वसदे वेले परिवारिक प्रोग्राम च नशीलियां दवाइयां दे दुरुपयोग अते अवैध तस्करी खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिहाड़ा, नशीली दवाइयां दा साडी सेहत ते असर बारे डॉक्टर संजीव लोचन जानकारी देणगे। इस तों इलावा सिलसिला होएगा उमरां दे पेंडे, जिस विच बलविंदर कौर नाल गलबात सुणोगे। इस दे नाल नाल सुरखियां च औरत ते गुणकारी रसोई। सवा 1 बजे प्रोग्राम पेश करांगे फौजी वीरां लई।

0: दोपहर 2:30 रंगली धरती प्रोग्राम च निकिता पुरी की आवाज च लोक गीत सुनोगे। ढोलक बूटा राम, मैडोलिन राहुल कुमार, बांसुरी गुरदीप सिंह, हारमोनियम राकेश कुमार। शाम 4:00 मुख खबरां पेश करांगे ते 4:02 ते सुफियाना कलाम च बीबी नूरा की आवाज विच तुसी सुनोगे कलाम। शाम 4:30 सरवण करोगे शेर दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण ते सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार शाम 5:30। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम पेश करांगे। अज इस विच डॉक्टर सईद अहमद पटेल सब्जियां दी सेहतमंद पनीरी बारे जानकारी देंगे। इस तों इलावा नशा विरोधी दिवस ते विशेष जानकारी दित्ती जावेगी ते नाल ही नाल प्रोग्राम होगा जी सब दी पसंद। 7:40 ते सबरंग प्रोग्राम च मोहम्मद अशरफ सदीक मुहर्रम दे मौके ते मनकबत ते तहरीर सुनोगे। इस तो फौरन बाद चंद्रा गजलां समात फरमाओगे। रात 8:00 जिंदगी हसीन है प्रोग्राम तुसी सुनोगे। 9:15 स्पॉटलाइट, 9:30 विचार चर्चा प्रोग्राम पेश कीता जावेगा। हुण तो कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे संस्कृत च समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां संयुक्तराष्ट्रसंघस्य महासचिवस्य वित्तीय स्वास्थ्यस्य विशेष अधिवक्त्रा नीदरलैंड देशस्य राज्ञा मैक्सिमा इत्यनया सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यम संदेशे श्रीमोदिना उक्तं यत् भारतस्य डिजिटल क्रांतिः वित्तीय सेवानां सारल्यं कृत्वा कथं सामान्य जनानां जीवनस्य सुगमतां वर्धयति जनान् सशक्तं च करोति इत्यस्मिन् विषये द्वयोः मध्ये चर्चा अभवत्।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया आजाद व्यापार समझौता सब तो व्यापक व्यापार समझौता है। भारत ने 2026 विच अपनी विक्रम प्रधानगी हेठ गुरुग्राम विच 11वीं विक्रम ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग की मेजबानी की। रक्षा आत्मनिर्भरता के एक अहम मील पत्थर वजो DRDO ने स्वदेशी नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम लई अंतिम संचारण मंजूरी प्राप्त कर ली।

0: मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 28 जून 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नैशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री होरां दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स FM 102.7 मेगाहर्ट्स DTH दी AIR पंजाब सेवा DRM 864 किलोहर्ट्स FM 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती FM 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर FM 100.9 मेगाहर्ट्स FM 100.8 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 135वीं कड़ी।
1: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो सारे ही सुनने वालों का स्वागत करते हैं जी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से। तुसी इस वेले सुन रहे हो प्रोग्राम सोनी सवेर। गल करते हैं जी हसना जिंदगी विच कितना जरूरी है। इस बारे हसना मनुखी जीवन का एक अनमोल तोहफा है। ये सिर्फ खुशी का प्रगटावा नहीं सगो सेहत लिए बहुत लाभदायक भी है। जदों असी हसते हाँ तो शरीर में सकारात्मक हारमोन पैदा होंगे ने जो तनाव तो चिंता को घटाते हैं। हसण दे नाल मन हल्का महसूस करता है आत्म विश्वास विच वाधा हुंदा है रिश्तियां विच मिठास वधदी है ते इसलिए ही कहा जाता है कि हासा सब तो वधिया दवाई है। हसना एक तरह की कुदरती कसरत भी है क्योंकि इस दौरान शरीर के कई अंग सरगर्म हो जाते हैं ते खून का संचार भी बेहतर हुंदा है। पर हसण का महत्व केवल शरीरक कसरत तक सीमित नहीं है। ये जीवन विच खुशी उम्मीद ते सकारात्मक सोच नू बनाई रखण दा भी साधन है। मुश्किल हालातां विच भी मुस्कुराउण वाला व्यक्ति चुनौतियां दा सामना वधेरे हिम्मत दे नाल करदा है। इसलिए जीवन नू खुशहाल ते संतुलित बनाउण लई हसना बहुत जरूरी है।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ। ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया।

अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात

महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से

0: पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
3: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
4: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3,000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है।

0: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत, लोकसत्ते ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड क्वीन मैक्सिमा ऑफ नेदरलैंड्स डिस्कस इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेड रिवोल्यूशन। गवर्नमेंट रिस्टोर्स commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary-General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015.

0: this morning, Gonzalo Plata turned savior as the resilient Ecuador pulled off a stunning 2-1 come-from-behind victory against Germany. Earlier, Ivory Coast also secured their place in the knockout stage for the first time with a comfortable 2-0 victory over Curaçao in Philadelphia today. Nicolas Pepe scored a dynamic double for Ivory Coast to end Curaçao's campaign on a disappointing note. Later, both Japan and Sweden stormed into the knockout round as they played a 1-1 draw in the Group F clash at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champions Brazil in the round of 32. Meanwhile, Netherlands outclassed Tunisia 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a round of 32 clash with Morocco. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Bangladesh by 5 wickets in a Group A clash in Manchester, England last night. Opting to bat first, Bangladesh posted 136 for 8 in the stipulated 20 overs. With this win, India have 6 points in Group A from 3 wins and 1 loss. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Anuja. Government lifts Iran war-linked curbs on commercial LPG, writes Hindustan Times. A headline in the Indian Express writes, from Sunday, India will resume tourist visas for Bangladesh nationals. Netra, India's airborne surveillance platform, gets final operational nod, states the Hindu. Sportspersons will now be allowed to carry javelins and bulky sports equipment on trains, even if they exceed the prescribed dimensions, according to the Railway Ministry, except pole vaults, informs the Pioneer. Another headline in the Pioneer writes, government expands QR code tracking to key drug categories to curb counterfeits. And finally, millions breathe easy. As the Times of India reports, CBSE students already in standards 7th to 9th with foreign language can keep their current combination till 10th. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार ये आकाशवाणी है खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा पहला बुलेटिन दियां खास खबरां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते नीदरलैंड्स दी महारानी मैक्सिमा ने भारत विच डिजिटल जनतक व्यवस्था नाल हुई क्रांतिकारी तब्दीली ते चर्चा कीती सरकार ने उद्योगिक ते व्यापारक एलपीजी सप्लाई तो सारियां पाबंदियां हटाईयां अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड ने कहा ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव से ऊर्जा दियां वाधियां कीमतों के बावजूद भारत आर्थिक विकास का एक मुख्य चालक बनिया होया है सरकार ने पासपोर्ट अर्जी फीस विच वाधा कीता अते औरतां दे आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप विच भारत ने बंगलादेश नूं 5 विकटां नाल हराया ते हुण खबरां विस्थार नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा नाल मुलाकात की चर्चा की कि किस तरह भारत की डिजिटल जनतक बुनियादी ढांचा आधारित क्रांति वित्तीय सेवावां वधेरे पहुंचयोग ते किफायती बना रही है उन्होंने कहा कि यह उपराले जीवन की सौख नूं वधा रहे हैं अते लोकां नूं वड्डे पद्धर ते सशक्त बना रहे हैं एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वह नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा नूं मिल के खुश ने जो वित्तीय सेहत लई संयुक्त राष्ट्र दे सकत्तर जनरल के विशेष वकील ते वित्तीय समावेश लई लंबे समय तो चली आ रही आलमी आवाज भी ने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व पद्धर के भाईवाल देशों नाल अपने तजर्बे सांझे करन लई वचनबद्ध है राणी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र के जनरल सकत्तर के वित्तीय सेहत लई विशेष वकील वजो भारत का दौरा कर रहे हैं विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने यात्रा वित्तीय समावेश नूं अगे वधाउण लई सांझी वचनबद्धता नूं दर्शाउंदी है ते समावेशी विकास ते पायेदार विकास लई डिजिटल जनतक प्रणालियां दा लाभ उठाउण च भारत ने परिवर्तनशील तजर्बे ते निर्माण करती है उन्हां दे दफ्तर तो एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा गया कि अपनी फेरी दौरान महारानी मैक्सिमा ने वख-वख पिछोकड़ दे लोकां

जट ते जूलियट फिल्म दे इस गीते नाल ही महक पंजाब दी प्रोग्राम हुण खत्म होया। असी आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। इस वेले 9 बज रहे ने, हुण पेश ने मुख खबरां।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल जनतक व्यवस्था नाल हुई क्रांतिकारी तब्दीली ते चर्चा की। सरकार ने उद्योगिक अते व्यापारक LPG सप्लाई तो सारिया पाबंदियां हटाईया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड ने कहा ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव से ऊर्जा दियां वधदियां कीमतों के बावजूद भारत आर्थिक विकास का एक मुख्य चालक बनिया होया है। सरकार ने पासपोर्ट अर्जी फीस विच वाधा कीता। पंजाब के माल मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने पुलिस अधिकारियों को पिंड सुरक्षा कमेटी नाल तालमेल बना के रखण अते नशियां दी सूचना मिलन ते तुरंत कार्रवाई अमल विच लियाउण दे हुकम जारी कीते। पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना तहत चालू वित्तीय साल 2026-27 दौरान अनुसूचित जातियां दे लाभपात्रियों 16,74,00,000 रुपए की राशि जारी की। पंजाब पुलिस ने अमृतसर अते फाजिलका विच वक-वक कार्रवाईयां दौरान 9 मुलजमां नूं 12 हथियारां वड्डी गिनती विच कारतूस ते नकदी समेत कीता गिरफ्तार। मौसम विभाग ने 27 जून तक पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच कुछ थावां ते गरज चमक दे नाल हल्की तो दरमियानी बारिश बारे येलो अलर्ट जारी कीता। भारत ने कल जर्मनी दे सोहल विच ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप विच 50 मीटर पिस्टल मुकाबले विच 4 होर तमगे जीते। क्रिकेट विच भारत अज बेलफास्ट विच मेजबान आयरलैंड खिलाफ पहला 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच खेडेगा अते औरतां दे ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप विच भारत ने बंगलादेश नूं 5 विकटां नाल हराया। सो ए सी जी

0: बाकी सब गंगा।
1: पापा कॉलेज दी फीस ज्यादा है।
2: बेटा
3: याद है बोनस दे कुछ पैसे असी किसे होर खाते विच रखे सन।
2: दो साल तो खाते विच कोई लेन देन नहीं होया है। हो सकता है इनऑपरेटिव हो गया होवे।
4: ता हुण बैंक जाओ जा वीडियो केवाईसी राही केवाईसी अपडेट करवाओ। खाता होवेगा एक्टिव बिल्कुल मुफ्त। चलो
3: किथे
4: एडमिशन लेन ली। खाता होया एक्टिव।
5: आरबीआई कहंदा है
6: जानकार बनो सुचेत रहो।
7: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार सूबा सरकार जनतक खेतर दे अदारे यानी पीएसयू ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी बीएमसी चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार सूबा सरकार जनतक खेतर दे अदारे यानी पीएसयू ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी बीएमसी चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
10: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो सारे ही सुनने वाले दा स्वागत करते हैं जी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते। तुसी सुन रहे हो गजलां दा प्रोग्राम। हुन सुनवान जा रहे हैं पिनाज मसानी दी आवाज़ विच एक गजल।

0: हेलो फरमाइश प्रोग्राम से स्वागत करते हैं। हेलो, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ, पिंड लादिया खोर जिला लुधियाना जी।
0: जी कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी प्रोग्राम च।
1: यार थोड़ा बहुत बहुत स्वागत जी।
0: जी शुक्रिया। तो अज की फरमाइश वाल वधदे हैं जी, कि फरमाइश लैके हाजिर होए हो?
1: मैं सुनिए जी, आप गाना सुनना जी, थोड़ी सी बेवफाई का
0: जी।
1: गाने के बोल आपने हमारी दोस्त सुनिए जी, गाना लगा लो तुम्हें।
0: हजार राहें मुड़ के देखें। लो जी सुनो फिर अपनी पसंद का गीत। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद सोनिया जी।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: प्रोग्राम हेलो फरमाइश बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। हेलो,
1: प्यार ते सत्कार परी सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी।
1: सोम दत्त बोलदा जी, मैं इस गेट नाभे तो जी।
0: जी सोम दत्त जी, स्वागत है प्रोग्राम च।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैन जी।
0: जी आई दी फरमाइश दस दियो, केड़ी फरमाइश लेके हाजिर हो?
1: मजबूर मूवी दा गीत सुनांगे जी, आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जी।
0: जी
1: सारे प्रोग्राम तुहाडे बहुत वधिया लगदे ने जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी थोड़ा।
1: Thank you.

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 28 जून 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालो नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नैशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री होरां दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स FM 102.7 मेगाहर्ट्स DTH दी AIR पंजाब सेवा DRM 864 किलोहर्ट्स FM 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती FM 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर FM 100.9 मेगाहर्ट्स FM 100.8 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 135वीं कड़ी।

0: बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों के एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़े कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं और संगठनों की सराहना की। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हॉर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत

0: उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हैं जी प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च तुसी सुनदे हो अपने मनपसंद पंजाबी गीत। तो इस प्रोग्राम च अपनी फरमाइशा भेजण लई व्हाट्सएप नंबर नोट करो जी 9465563070। रिपीट कर देने 9465563070। तो टाइप करो जी अपने मनपसंद गीतां दे बोल, अपना नाम ते अपने शहर दा नाम, ते सानू व्हाट्सएप राहीं भेज दिओ जी। शुरू करदे हाँ प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी इस गीत दे नाल।

चाणक दिया ओवी नीच चाणक दिया वंगा वंगा दे विच अथरी जवानी दिया संगा संगा ने सानू लुट पुट लिया नी रूप राणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ये परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स के महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। LPG

0: आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12:05 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ।

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 28 जून 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नैशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृह मंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
2: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा।

0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेश है जी अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समां।

दोपहर 2:30 बजे सुनोगे प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस प्रोग्राम विच तुसी निकिता पुरी दी आवाज़ विच लोक गीत सुनोगे।

रात 7:40 ते सुनोगे साडा उर्दू प्रोग्राम सबरंग। अज दे इस प्रोग्राम विच मोहरम दे मौके खास प्रोग्राम पेश कीता जावेगा, जिसनु सुनन तो बाद गज़लां दा आनंद माणोगे।

रात 8 बजे सुनोगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है, ते रात 9:30 बजे सुनोगे प्रोग्राम डिस्कशन इन पंजाबी। रात 10:02 ते सुनोगे प्रोग्राम सुरचनकार, ते रात 10:30 बजे सुनोगे प्रोग्राम सरगम।

इस दरमियान समाचार ते मुक्ख समाचार अपने निर्धारित समय ते वारोवार प्रसारित किए जाएंगे। ये सन अज साढ़े दिन भर च प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत की तहरीक आज़ादी के लिए मुल्क को वंदे मातरम का अतिया किया, जो सबसे ज़्यादा जिंदा व पाइंदा रहने वाला तहरीक का एक जरिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज को उनकी सालगिरह पर खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी ज़िंदगी में महरूम पसमानदा तबकों और इस्तेशाल शुदा लोगों को ऊपर उठाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके अजीम नज़रियात आने वाले दिनों में कौम की रहनुमाई करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के ख्वातीन के फोरम 2026 में ख्वातीन की क़यादत वाले तहरीक के अपने अज़्म को दोहराया है। आज एक वर्चुअल तकरीब से खिताब करते हुए ख्वातीन और बच्चों की तरक्की की वज़ीर अन्नापूर्णा देवी ने जोर देकर कहा कि ख्वातीन महज तरक्की के फ़ायदे हासिल करने के लिए नहीं हैं, बल्कि वो 2047 तक विकसित भारत की ताकतवर तरीन महारिक भी हैं। भारत में जर्मनी के सफ़ीर फिलिप अकरमान ने कहा है कि भारत काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरा है। एक न्यूज़ एजेंसी के साथ बात करते हुए जनाब अकरमान ने तजारत, सियासत और कलीदी शोबे में ज़बरदस्त ताउन को उजागर करते हुए भारत और जर्मनी के दरमियान माहौल के लिए साजगार और पायदार तरक्की में शराकतदारी की कामयाबी को उजागर किया। आज आशूरा मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के नवासे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने हक़ सदाकत और इंसाफ की सरबलंदी के लिए मैदान करबला में अपनी जान का जो नजराना पेश किया था, उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर ताज़ियों के जुलूस निकाले जा रहे हैं। मजालिस का भी अहतमाम किया गया है, जिसमें शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मुहर्रम हमें हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है, जिससे शुजात, हमदर्दी और हक़ इंसाफ़ के तई पाबंदी की इकदार को तहरीक मिलती है। आशूरा मुहर्रम के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन से कई लोगों को सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर कायम रहने की तरगीब मिलती है। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि इससे हमें हिम्मत और यकीन के पायदार क़ुव्वत की याद दहानी भी होती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज यौम आशूरा मुहर्रम के मौके पर ट्रैफिक के लिए खसूसी इंतजाम किए हैं। सेंट्रल रेंज के ट्रैफिक पुलिस के डिप्टी कमिश्नर निशांत गुप्ता ने बताया है कि इस इलाके में ट्रैफिक के बंदोबस्त और लोगों की हिफाजत की यकीन दहानी के लिए तकरीबन 150 अफराद पर मुश्तमिल पुलिस अमला तैनात किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नेताजी सुभाष मार्ग से आने वाली गाड़ियों को जामे मस्जिद की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होगी। ट्रैफिक का रुख नेताजी सुभाष मार्ग से दूसरे रास्तों की तरफ मोड़ दिया गया है, ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके और मुहर्रम का जुलूस बिला रुकावट आगे जा सके। क्रिकेट में आज बेलफास्ट में पहले T20 बैन अक्वामी मुकाबले में भारत मेज़बान आयरलैंड का सामना करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से खेला जाएगा। इतवार के रोज़ भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ अपना दूसरा और आखिरी T20 मैच खेलेगी। फीफा आलमी कप में आज सुबह सवेरे सैन फ्रांसिस्को बे स्टेडियम में ग्रुप डी के एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मरहले में पहुँच गया है, हालांकि उसका पैरागुए के खिलाफ मैच हार जीत के बगैर ख़त्म हो गया। आखिर में खास खबरें एक बार और। वज़ीर दाखला अमित शाह ने नशीली अशिया की रोकथाम के लिए एक मुत्तहदा मुहिम के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नशीली अशिया की इस लानत से कौमी सलामती और नौजवानों के मुस्तकबिल को ख़तरा लाहिक है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर अतीय में खुरद बुरद के केस में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। भारत ने एक मुस्तहकम ए आई सप्लाई चेन बनाने के लिए अमरीका की क़यादत वाली पहल से मुतालिक एक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं, जिसमें 34 ममालिक शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आशूरा मुहर्रम के मौके पर हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को याद किया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: खबरों तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई। सुनदे आज दे प्रोग्राम दा अगला गीत शान दी आवाज़ विच।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्थ

0: करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल

0: उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
2: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: 60,000 students. जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य

0: सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काटलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहाँ के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। दोपहर दे 2:30 हो रहे ने। हुण पेश है जी प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम विच आओ सुनदे हाँ निकिता पुरी दी आवाज़ विच लोक गीत, जिन्हां दा ढोलक ते साथ दे रहे ने बूटा राम, मैडोलियन ते साथ दित्ता जी राहुल कुमार ने, बांसुरे ते गुरदीप सिंह ने, ते हारमोनियम ते राकेश कुमार ने। आओ सुनते हाँ इन्हां दी आवाज़ विच पहला लोक गीत मेहंदी लावां आईयां बनो तेनों।

0: इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।
1: ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी तुहाडा। प्रोग्राम चल रहा है रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम विच तुसी सुन रहे हो निकिता पुरी दी आवाज़ विच लोक गीत। आओ सुनते हाँ अगला लोक गीत अज दी दिहाड़ी रख।

प्रोग्राम चल रहे हैं चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता हुए AIR पंजाब ते बिल्कुल खुशी दे विच कई बार असी बहुत कुछ भुल भी जांदे आ ते भुल गए ने साडे लिसनर साडे स्रोते अपना पता दसना इस चिट्ठी दे विच नाम जरूर लिखे इन्होंने जी कुलदीप सिंह गुरविंदर सिंह ते यादविंदर सिंह पर कित्थों ने ये इन्होंने लिखिया नहीं है खुशी दे विच भुल गए ने ते रिंगनी छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा ते करुणा वर्मा ते पंचकुला सैक्टर 9 तो आशु चुग अश्वनी चुग गोविंद चुग टोनी दीवान ते लव दीवान ते राधे भाविक ढींगड़ा जी चिट्ठी लिख रहे हैं ते फ्रेंड्स क्लोनिकल नाल तो गुरविंदर सिंह पांधा इंद्रजीत कौर बेबी मनमीत मनविंदर सिंह पांधा ते जी एस रामगढ़िया ते मलोट तो कुलवंत गिल जसवंत गिल रमन गिल ते जिला श्री मुक्तसर साहब ते पिंड मोला इथों चिट्ठी है जी पाल गिल गुरदयाल

बिल्कुल जी, कैलगरी तों ये जट्टी गीत बहुत ही खूबसूरत इंद्र मान की आवाज़ के असी सुनिया। तो अमरगढ़ तहसील सादुल शहर तो कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, हरविंदर मान, राजा सिंह मान, कुलविंदर कौर मान, एक बार फिर तो इन्होंने कुलवंत मान, कुलविंदर कौर मान, के एस मान, ताज मुहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही महराज जहां लिख रहे ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार तो ये चिट्ठी। तो लिखण वाले ने जी बठिंडा रोड डबवाली तो राजेंद्र नरंग, अंजू नरंग, मोहित नरंग, प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, कुलदीप, एकम, दमन, अभिजोत चिट्ठी लिख रहे ने। करणवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर पिछों कैंचियां बठिंडा तो फरमाइश इन्होंने सारे की है। गुरनीत दोसांझ की खूबसूरत आवाज़।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते बिल्कुल असी उस घड़ी तो सद के जांदे आ जदों सानू कोई खुशी मिल जांदी है। ते मखू फिरोजपुर तो चिट्ठी लिख रहे ने बिल्ला बजाज, मनु बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज। ते लिखण वाले ने जी मलोट तो जगतार गिल, परमजीत कौर गिल, गैवी गिल, अमनदीप गिल ते सुखबीर सिंह छाचली तो इन्हां दे नाल। ते बुरज सिद्धवा मलोट तो सरबजोत सिद्धू, अविताज सिद्धू, जगतार जग्गा धौला किंगरा तो इन्हां दे नाल। ते पिंड इस्लाम वाला जिला फासिलका तो सोहन लाल राठी, ओम प्रकाश राठी, शगन लाल ते लव कुश वर्मा ते बाबू सिंह महीने वाला ते छतरपाल सिंह खंगूड़ा ते राजेंद्र सिंह ते गुरमेज सिंह विरक पिंड कमाल वाला तो ते रणजीत सिंह कौर पट्टी, बोर्ड सिंह पट्टी ते काका पट्टी इन्हां दे नाल पिंड कमाल वाला तो इस चिट्ठी दे विच शामिल होए ने जी। ते चौधरी मार मार्केट अबोहर रोड मलोट तो कप्तान सिंह, सैकटरी शमशेर सिंह, धर्मेंद्र शर्मा हरफूल ते रविंदर कुमार राधे चिट्ठी लिख रहे ने। ते फरमाइश इन्हां सारयां दी बनी ते साथियां दी खूबसूरत आवाज़।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते चिट्ठी है जी कस्बा बराड़ा जिला अंबाला तो रवि कुमार राहुल ते रणजीत कौर प्रियंका जयप्रकाश राहुल ते नूर नमन सिमरन गुरकीरत ते गुरु शब्द राहुल ते सतनाम सिंह रखड़ा अमरजीत कौर रखड़ा पोत्र इन्हां दा तेग फतेह सिंह रखड़ा ते पोत्री जसकुन रखड़ा बागा पुराणा तो चिट्ठी ते पिंड चाहल कलां नवां शहर तो अमरजीत बंगा परमिंदर बंगा राजा बंगा कुलविंदर कौर ते अंबा चाहल ते अपरा सिटी तो चिट्ठी है जी रूपलाल नाहर अमर नाहर ते अमन नाहर ते शेखर नाहर अंबा प्रधान ते राजा पलवान ते परमिंदर बंगा फरमाइश इन्हां सारयां दी गुरदास मान दी खूबसूरत आवाज़।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लिखिया है गीत ते गाया भी बहुत खूबसूरत है ते एक जो पते वाली गल है इस गीत दे विचो ए है वैसे तो हर गल ही पते वाली है पर जो स्पैशल जो अज दे टाइम दे विच साडे लई समझनी बहुत जरूरी है वह ये है कि जे असी बिना नखरे तो रोटी खांदे आ घर की रोटी असी खाते हाँ तो साड़ी सेहत तो बिल्कुल फिट रहती है नहीं तो असी जे नखरे करते हैं बाहर जाके असी रोटी खाते हाँ पीज़ा बर्गर खाते हाँ तो सेहत पर असर पैंदा इस करके जो भी असी रोटी खाइए घर के तरीके दे नाल सलीके दे नाल बैठ के पूरे आदर दे नाल असी रब का शुकराना करके रोटी खाइए तो अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। तो लिखण वाले ने जी पिंड अमीर शाह वाला तहसील जिला फिरोजपुर तो लिखण वाले ने जी मुख्तियार सिंह वारवल तो इन्हों के बहुत सारे कहिंदे दोस्त मित्र ने जीरा इन्हां दी तहसील है तो फिरोजपुर तो यह चिट्ठी है पिंड हैगा अमीर शाह वाला। तो लिखण वाले ने जी महाराष्ट्र तो बीड शहर तो चिट्ठी है प्रकाश पगारिया प्राग पगारिया प्रदीप ते केशव पटेल ते राम निवास अग्रवाल ते डब वाली हरियाणा तो JK बकौलिया श्रीमती सुनीता बकौलिया संजय अनिल ते मीनू बकौलिया ते पिंड कुड़ियाणा जिला फाजिलका तो भोला स्वाग ते डॉक्टर अमरदीप सिंह ते अमृतपाल कौर सुखमंदर कौर ते पोथरा गुरतेश्वर ते पोथरी रितमन जोत ते अभिजोत गुणताज ते दोस्त इन्हां दे बलतेज सिंह बाबा तरलोक सिंह ते मलकीत सिंह दीप ਧਿੰਖੜਾ ਤੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜੀਤ ਸੁਆਗ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕਾਠਪਾਲ ਤੇ ਅਮਨ ਵਰਮਾ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਨਾਥ ਅਤਾਪੁਰ ਅਤੇ ਪੋਤਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੁਖਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੋਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗਗਨ ਕੋਖਰੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते चिट्ठियां जी पिंड हैगा इन्हां दा दौलतपुर नवां शहर तो लिख रहे ने प्रीथी सिंह दुग्गल भजन कौर नवदीप दुग्गल ते अरमान दुग्गल कृतिका दुग्गल ते गुरलीन ते पब्बू दुग्गल ते कालू पेंटर इन्हां दे नाल श्री करनपुर राजस्थान तो चिट्ठिया जी शिव कुमार सेठी सुनीता सेठी कमल सेठी ज्योति सेठी शब्द सेठी वाणी सेठी ते राजू टुटेजा ते इन्हां दे साथी कोटली कला तो यादविंदर सिंह सुखविंदर सिंह रविंदर सिंह मनजीत सिंह ते इन्हां दे नाल गुरजोत सिंह ते लिखण वाले ने जी परमलागंज अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश तो चिट्ठी है जी बलवंत कुमार वर्मा राजू बाई ते माया वर्मा शोभा वर्मा राहुल ज्योति अतुल ते पायल वर्मा प्रियांश वर्मा ते ऋषि वर्मा फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांधा इंद्रजीत कौर बेबी मनमीत ते मनविंदर सिंह पांधा जी की चिट्ठी फरमाइश इन्हां सारयां दी ते खूबसूरत आवाज़ है सभी कालों ते साथियों की।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठिया मिठिया ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते चिट्ठी लिख रहे ने जी पिंड हैगा समालसर जिला मोगा लक्ष्मण सिंह कारू ते रहमत लपाई ते लक्ष्मण लपाई ते हरप्रीत लपाई ते गोरा बंबीहा पाई ते लिखण वाले ने जी मेहर नगर उमर खेड़ महाराष्ट्र तो अभिजीत गवानकर राही श्रीमती सरिता गवानकर प्रिंस एकांश गवानकर ते बदलापुर मुंबई तो सिद्धांत गवानकर परिणीता गवानकर अर्जुन गवानकर टुक टुक इन्हों का घर का नाम ते आकार हाइट्स बहादरा नागपुर तो वैशाली शैलेष गवानकर सुमित गवानकर ते कुमारी ध्वनी गवानकर परी इन्हों का घर का नाम ते सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी टी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह ते डॉक्टर अमनदीप ते कालका तो शुभ चंद्र बजाज साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज ते पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा जसवीर रेखा गगन सोनी सीता और गीता ते महादेव घाट हमलेश्वर तो डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथलेश ठाकुर तारनी ठाकुर सूरज ठाकुर ज्योति ठाकुर ते बाबू रियांश ठाकुर फरमाइश इन्हां सारयां दी है ते आवाज है जी शेखर कौशल दी।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते मोहल्ला फतेहगढ़ तो लुधियाणा तो है जी चिट्ठी विनोद पुरी VP रंजू अशोक पुरी ते सुशील पुरी BK पुरी कैलाश पुरी अनीता पुरी ममता ते मेघा पुरी पूजा पुरी गगन कपूर गुंजन कपूर लालसा कपूर रमा मलिक कुणाल मलिक निधि मलिक ते हरीश पुरी ते सतीश पुरी राकेश पुरी विनोद पुरी पाली ते DC ते अरुण पुरी ते इन्हां ने थल्ले भी नाम लिखिया जी नेहा एकता ते शमी ते बोधी ते सुनील ते VK RS पुरी कहिंदे गाणा कोई भी सुना दिओ ते गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो चिट्ठी लिख रहे हैं इन्हां ने बहुत सारे नाम नहीं लिखे सिर्फ इक्को ही नाम लिखे है जी ते पिंड जंट वाला चढ़त सिंह तो राकेश नरेश जगदीश अनिकेत अंशु ते समित रहेजा ते छत्तीसगढ़ पाटा पारा तत्रिंकी तो द्वारका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा चावेंद्र कुमार वर्मा ते डप वाली हरियाणा तो JK बाकौलिया श्रीमती सुनीता ते संजय अनिल ते मीनू बाकौलिया ते लिखण वाले ने जी मसीता डप वाली तो दर्शन लोट ते सरगुण इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर ते हानी लोट ते पिंड पक्षी खुर्द फरीदकोट तो सतनाम सिंह गिल गुरिंदर गिल गुलेन ते सारा गिल परिवार पिंड चकोड़ी यमुनानगर तो रणधीर सिंह गुरमेज ते योगम वीरें ते लाडी सिंह धालीवाल इन्हां दे नाल ते लिखण वाले ने जी हिंदी दे विच इन्होंने लिखी है जी चिट्ठी ते कहंदे जी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी ते मंडी गोलवाल राजस्थान तो ब्रिजलाल चौहान नीरज कुमार चौहान ठंडी ठंडी इन्होंने शायद तां लिखी है क्योंकि गर्मी का बहुत मौसम चल रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी पै रही है तो इस करके इन्हां दी सोच है कि इहदे नाल शायद थोड़ी जिहड़ी गर्मी है उस तो राहत सानू मिले तो फरमाइश है इन्हां सारयां दी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत रणजीत बावा दी

0: मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 28 जून 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नैशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री होरां दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स FM 102.7 मेगाहर्ट्स DTH दी AIR पंजाब सेवा DRM 864 किलोहर्ट्स FM 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती FM 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर FM 100.9 मेगाहर्ट्स FM 100.8 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 135वीं कड़ी
1: ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਨੂਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ

आवह सजना हो देखा दर्शन तेरा राम, कर आपनड़ै खड़ी तका मैं मनचाओ कनेरा राम। सूही राग विच उचारित ए फरमान साहिब श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचित है, जिस विच बिरहों कुंठी जीव आत्मा प्रभु दे दर्शना दी अभिलाषा रखदी हुई बेनती करदी है। उस दे हिरदे दी अवस्था प्रभु मिलनी दी तांग दा चितमन है। पंचम पातशाह भी सूही राग विच उचारे हुए शब्द विच ऐसे हिरदे दी अवस्था बयान करदे हुए बचन करदे ने कि हे प्रभु, तेरा दर्शन करके मैनु आत्मिक जीवन प्राप्त हो जाता है। जेकर हे प्रभु तेरी पूर्ण कृपा होए तां मैनू वी गुरु मिल जावे। मेरी एहो अरजोई सुनो, मैनू अपना सेवक चेला जान के नाम दी दात बख्शो। हे दातार प्रभु, मैनू अपनी शरण विच रखो, क्योंकि विरले मनुखां ने ही तेरे नाल सांझ पाई है। हे मेरे मीता मित्र प्रभु, मेरी बिनय सुनो, आप जी दे सोने चरण कमल मेरे हिरदे विच वस जाण। हे गुणा दे खजाने प्रभु, तेरा सेवक तेरे दर ते तेरे चरणा विच यही अरदास करदा है। दर आया दी लाज रखो, दास नू कदे भी ना विसारो। नानक एक करै अरदास विसर नाही,

पूरन गुणतास। आओ सरवण करिए बीबी बलजीत कौर ते उना दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ए शब्द, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन करम होए।

पूरन करम होए प्रभ मेरा। इस शब्द का गायन किया बीबी बलजीत कौर ते उना दे रागी जत्थे ने। सुन वड्डा आखे सब कोए, केवड वड्डा डीठा होए, कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोए न जाने तेरा चेता केवड चीरा। प्रभु दी वड्याई बेअंत है, बयान तो परे है, सुन सुन के ता हर कोई उसनू वड्डा कही जांदा है। वो कितना वड्डा है उसनू ही पता है जिसने उसनू वेख्या होवे। उसकी कीमत दा कोई

ही तकड़ी ते आप ही अपनी वड्याई जानदा है। तू आप ही सब कुछ देखता है ते जानदा है। आपे ही प्रभु तू वणजारा है। मैं ज्ञानहीन, मैं नीमा, मैं आवागवन विच फसया परदेसी दी न्याई हाँ। मैं मूरख तेरी संगत तो बिना, तेरी शरण तो हीणा, किवें तेरी था पा सकदा हाँ, किवें तेरी महिमा जान सकदा हाँ। मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, तू जल थल महियल परपुर लीना, तू आपे सर्ब समाणा। सरवण करदे हां भाई गोपाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया।

मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, तू जलथल महियल परपुर लीना, तू आपे सर्ब समाणा। इस शब्द का गायन किया सी भाई गोपाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही।

0: श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 3746.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, DRM 854 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगा हर्ट्स, FM बैंड 100.9 मेगा हर्ट्स से DTHD आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लो हुण पेश है अज दे प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा का वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 854 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो दी कड़ी ते 6:20 हो रहे ने। थोड़ी देर से सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

0: टर्न योर कंसर्न इन टू एक्शन TYCIA दे सहयोग नाल अज अंतरराष्ट्री नशा रोकथाम ते गैर कानूनी तस्करी विरोधी दिवस मौके कराया गया। इस एक रोजा मीटिंग विच राज सरकार जेल विभाग ते पंजाब समेत देश भर के सेहत माहिरां ने हिस्सा लिया। इस दौरान जेलां विच कैदियां दी बेहतर सेहत लई सहूलतां नूं होर मजबूत करन बारे विचार वटांदरा कीता गया। उद्घाटनी सैशन नूं संबोधन करदिआं सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉ बलबीर सिंह ने चल रही युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम तहत नशा मुक्ति ते मानसिक सेहत सेवावां नूं मजबूत करन दे यतनां ते चानणा पाया। उन्हां कहा कि नशे की समस्या नाल निजिठण लई सारे पक्खां विचकार तालमेल बेहद जरूरी है। नागरिकां नूं साइबर धोखाधड़ी तो बचाउण दी अपनी वचनबद्धता तहत पंजाब पुलिस ते राज साइबर क्राइम डिवीजन ने साइबर अपराधियों खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले एक साल विच पंजाब पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी नाल जुड़े 63,749 बैंक खाते फ्रीज किए ने, जिन्हां विच करीब 540.34 करोड़ रुपए के लैण देण शामिल सन। 2024 तो हुण तक करीब 64 करोड़ रुपए की रकम पीड़ितों नूं वापस की गई है, जिस विच करीब 38.42 करोड़ रुपए 1 जनवरी 2025 तो बाद रिकवर हुए ने। इस समय दौरान राज्य 62,253 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए ने। पिछले माली साल में धोखाधड़ी नाल जुड़ी रकम नूं फ्रीज करन दी दर 16.13% तो वध के 23.43% हो गई है, जो माली रिकवरी विच महत्वपूर्ण सुधार नूं दर्शाउंदा है। जानकारी सांझी करदिआं DGP गौरव यादव ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी गिरोहां खिलाफ वड्डी कार्रवाई नाल ना सिर्फ हजारां बैंक खाते फ्रीज होए ने अते धोखाधड़ी की रकम वापस मिली है, सगों देश भर में सरगर्म संगठित साइबर अपराध नैटवर्क का भी पर्दाफाश होया है। उन्होंने कहा कि जांच में साइबर अपराधियों के तरीकों माली लैण देण अते अंतरराज्जी संबंधा की पछाण विच वड्डी सफलता मिली है। समय सिर कार्रवाई अते आधुनिक तकनोलॉजी राही साइबर क्राइम डिवीजन ने धोखाधड़ी नैटवर्क नूं कमजोर किया है, नागरिकों की बचत की सुरक्षा की है अते यकीनी बनाया कि दोषियों नूं न्याय दे घेरे विच लिआंदा जावे। जिलों में जलंधर कमिश्नरेट विच सब तो वध 16,032 बैंक खाते फ्रीज किए गए, जिस नाल 6,81,00,000 रुपए तो वध की रिकवरी हुई है। उन्होंने कहा कि लगातार चलाई जा रही सख्त मुहिम अते वड्डे पद्धर ते जन जागरूकता प्रोग्राम रल के साइबर अपराध नाल निजिठण लई पंजाब पुलिस दी बहुपक्खी रणनीति नूं दर्शाउंदे ने। पंजाब दे बच्चियां दे सुनहरी अते सेहतमंद भविख लई मजबूत नींह रखण दे उद्देश नाल पंजाब सरकार दे समाजिक सुरक्षा औरतां ते बच्चियां दे विकास बारे विभाग ने एक अहम पहलकदमी कीती है। इस बारे जानकारी दिंदिआं पंजाब दे स्त्री ते बाल विकास मंत्री डॉ बलजीत कौर ने एक विशेष सम्मेलन दौरान कहा कि विभाग ने पंजाब बाल विकास सम्मेलन 2026 तहत बच्चियां दे सर्वपक्षी विकास लई छोटे कदम वड्डा विकास मुहिम शुरू कीती है। उन्होंने कहा कि यह पहलकदमी बच्चियां दे शरीरक मानसिक बौद्धिक ते भावनात्मक विकास नूं यकीनी बनाउण विच इक मील पत्थर साबित होएगी।
1: ये प्रोग्राम दा इक्को ही मकसद है कि साडे बच्चियां नूं जो कि 3 साल तो छोटे ने उन्हां दा असी पूरी तरह शरीरक विकास उन्हां दे विच जो हुण तक असी मॉल नरिशमेंट या स्टंटिंग वाले लक्षण जिहड़े पाए जांदे सी या बहुत वारी साडे बच्चे कई वारी छोटी उम्र दे विच किसी बीमारी करके अंगहीण हो जांदे आ, सो उन्हां दे आउण वाले फ्यूचर दे विच जो उन्हां दी डिवेलपमेंट नूं रोकण दा वड्डा कारण बणदे आ उहनूं असी शुरू तों ही खत्म करके अपने बच्चियां विकास करके आने वाले पंजाब जो कि असीं विंगला पंजाब दी गल करदे आं उहदी नींह जिहड़ी आ उह पहलां तों ही बणांगे।
0: ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNJ ਜਲੰਧਰ। जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गैर कानूनी अते देश विरोधी गतिविधियां विच शामिल होण दे इल्जामां विच 3 व्यक्तियां नूं गिरफ्तार कीता है। पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दस्सिया कि इह तिन्नों पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद पट्टी अते एक होर व्यक्ति नूं सोशल मीडिया ते वख-वख फोन एप्लीकेशनां राहीं सरकारी इमारतां ते होर संवेदनशील जानकारी भेजण विच शामिल सन। इन्हां विच 2 व्यक्ति गुरु नानकपुरा चुगिट्टी दे वसनीक ने अते इक कमल विहार रावा मंडी इलाके दा रहण वाला है। इन्हां नूं गैर कानूनी गतिविधियां की रोकथाम बारे कानून तहत गिरफ्तार किया गया ते मामले की डूंघाई नाल जांच जारी है। पंजाब दे खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री गुरमीत सिंह खुंडिया ने दस्सिया कि सावणी रुत दौरान झोने की सीधी बिजाई अधीन रकबे विच 16% वाधा दर्ज किया गया, जो पंजाब सरकार की सूबे विच धरती हेठले पानी नूं बचाउण संबंधी मुहिम नूं किसानां वल्लों मिल रहे वड्डे हुलारे नूं दर्शाउंदा है। पानी की बचत वाली इस तकनीक तहत हुण तक 26,896 किसानों ने 3.41 लाख एकड़ रकबा लिआंदा है। पंजाब के सारे सरकारी दफ्तर ते संस्थावां दे दफ्तरी समय नूं पहला वांग सवेरे 9 बजे तो शाम 5 बजे तक बहाल कर दिता गया है। सरकार दे बुलारे ने दस्सिया कि सूबे विच दफ्तरी समय विच इह तब्दीली 1 जुलाई 2026 तो लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

एक टाइम भी अगर पानी दोगे तो वो आराम नाल पनीरी निकल सकती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जमीन है वो ज़्यादा गिली नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए। अगर ये है तो चांसेस है कि थोड़ी जो पनीरी है वो एक यूनिफॉर्म या फिर बराबर निकलूगी। तो कई थां ते आपां देखते हैं कि जो पनीरी है जिवें टमाटर है, बैंगन है या फिर फुल गोभी है, यदि जो पनीरी निकलने लिए करीबन 5 तो 7 दिन का टाइम लेंदी है। तो इस तो अलावा अगर तुसी मिर्च, शिमला मिर्च या फिर प्याज दी अगर पनीरी तैयार कर रहे हो तो उस कंडीशन च तुहानू 7 तो 8 या फिर 7 तो 10 दिन लग सकते हैं। इस हिसाब नाल तुसी इहदी सांभ संभाल करनी है। अगर थोनू लग रहा है कि कोई बीमारी या फिर कोई कीड़िया का अटैक अगर हो रहा तो उहदे च कीड़िया लई तुसी रोगर या फिर मेलाथियन 0.5 ml प्रति लीटर दे हिसाब नाल तुसी इहदी वरतों कर सकते हो। बट ये जो तुसी वरतों करनी है वो जरूरत दे हिसाब नाल ही करनी है। ब्लाइंडली आपां जदों मर्जी आ गया उस टाइम इहदी यूज़ नहीं करनी। दैन कई वारी आपां एक डैम्पिंग ऑफ या फिर उखेड़ा रोग की समस्या आ जाती है, उन्हों तुसी कंट्रोल करने लिए 0.3% बेविस्टिन या फिर कैप्टान दे नाल तुसी गुड़च कर सकते हो। ये सीगा अपना जमीन की पनीरी तैयार करन बारे। ते इहदे च तुसी टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, ये सारी पनीरी तुसी ये जमीन च तैयार कर सकते हो। हुण जदों आपां गल करदे आ कद्दू जाति वाली पनीरी तैयार करन बारे, तो उस कंडीशन च तुसी अगर जमीन च तैयार करोगे तो चांसेस है कि जदों उन्हों आपां पट्टांगे तो चांसेस है वो जो जड़ है वो टुट जूगी। तो जड़ टुटन करके जो उखेड़ा रोग है या फिर विल्टिंग है या फिर मर रोग है वो ईजीली अटैक कर देंदा ते अपना बूटा मर सकदा। जस्ट उन्हों अवॉइड करने लिए आपां कुछ होर नवी तकनीक यूज़ करते हैं। एक इस तो 10-15 साल पहले एक आपां पॉली बैग मैथड वो यूज़ करते सी। जो पॉली बैग आपां यूज़ करते उहदे च करीबन उहदा जो डायमेंशन है वो करीबन 10 cm by 15 cm का होना चाहिए सी। ते उहदे च जो आपां मीडिया यूज़ करते हैं वो करीबन सॉइल या फिर मिट्टी प्लस FYM या फिर गली सड़ी जो रूड़ी है वो बराबर की मात्रा च मिक्स करके उन्हों यूज़ करना चाहिए। तो जदों भी तुसी लिफाफे भरने हैं उस तो पहले लिफाफे च छेद कर देना चाहिए ताकि एक्सेस जो पानी है वो लिफाफे च ना खड़े ते वो सारा निकल जाए। ते तुसी इनू भरन तो बाद जो जिन्हें भी कद्दू जाति वाले जो फसल है जिमें खीरा है, खरबूजा है या फिर मतीरा है, दैन काली तोरी है, करेला है, ये सारे तुसी इहदे च बीज सकदे। बट इहदा एक बेनिफिट मेन सीगा कि ये जो पूरी फसल है ये करीबन 15 तो 20 दिन पहले तुहाडी खेत च तैयार हो जूगी। तो अगर तुसी टारगेट कर रहे हो कि साडी जो फसल है वो मंडी च छेती चले जाए तो उहदे लई तुसी पॉली बैग मैथड ये फॉलो कर सकते हो। इस तो अलावा जो आखिरी तकनीक है नर्सरी तैयार करने लिए वो है प्लग ट्रे मैथड। प्लग ट्रे मैथड एक एडवांस मैथड है। ये जो आपां जो मीडिया यूज़ करते हैं वो कोकोपीट, परलाइट ते वर्मिकुलाइट का मीडिया यूज़ करते हैं। उन्हों तुसी चंगी तरह मिक्स करके गमले दे हिसाब नाल या फिर क्रेट दे हिसाब नाल मिक्स करना चाहिए। तो ये लाइट वेट होने करके तुसी इनू आराम नाल ट्रांसपोर्टेशन च भी लेके जा सकते हो। तो तुसी जदों पनीरी तैयार करोगे तो ये जो ट्रे दे साइजेस है वो अलग अलग हिसाब नाल मिलते हैं। जिमें खीरा है या फिर खरबूजा है, यदा जो सीड का साइज़ है वो काफ़ी छोटा होंगे। तो उन्हों तुसी छोटे जो प्लग ट्रे का साइज़ है मतलब 1 इंच जो डायमीटर है गुलाई का वो तुसी यूज़ कर सकते हो। जिथे बीज का साइज़ वड्डा है जिमें पंपकिन है या फिर घिया कद्दू है या फिर तोरी है, करेला है, ये लिए तुसी 1.25 या फिर 1.5 इंच का जो गुलाई वाला जो प्लग ट्रे है वो तुसी यूज़ करनी चाहिए। दैन आ वाले जो यदि जो गहराई है वो करीबन 1 या फिर 1.5 इंच की होंगी है तो तुसी उन्हों आराम नाल स्टोर भी कर सकते हो। यदा जो मेन एडवांटेज है कि एक यूनिफॉर्म तुसी मिक्सचर तैयार कर सकते हो, ये ईजीली तुसी हैंडल कर सकते हो। तो बीमारी जो मिट्टी राही अगर आ रही है तो उन्हों तुसी अवॉइड कर सकते हो बाय यूजिंग कोकोपीट, परलाइट ते वर्मिकुलाइट। इनू जदों भी तुसी यूज़ कर रहे हो उस तो बाद
एक तह ला के या फिर यदि बिजाई करके

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन मैं अमन देव। पहला चोणवियां खबरां। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे संबंधी गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत मुहिम जन भागीदारी तो प्रेरित एक लोक लहर बन गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिणी कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून नाल दुवाले संबंधों को मजबूत करने लिए व्यापक विचार वटांदरा किया है। पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम डिवीजन ने पिछले एक साल दौरान साइबर धोखाधड़ी जुड़े 63,749 बैंक खातों से रोक ला दी है। भारत ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में सोने के 7 तमगे तमगा सूची चोटी ते रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री राम जन्म भूमि मंदिर से चढ़ावे और दान नाल जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR 8 नामजद मुलजमान गिरफ्तार कर लिया है। FIR अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टीनू समेत होर अणपछाते मुलजमान के नाम शामिल ने। यह FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों से गठित विशेष जांच टीम SIT की सिफारिश तो बाद श्री राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। यह शिकायत ट्रस्ट के मैंबर कृष्ण मोहन ने दर्ज करवाई है। SIT ने मंगलवार को अपनी मुढ़ली रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, जिस तो बाद कल केस दर्ज किया गया। ट्रस्ट को प्राप्त चढ़ावे और दान की कथित चोरी के इल्जाम सामने आने तो बाद यह मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत मुहिम जन भागीदारी तो प्रेरित एक लोक लहर बन गई है। श्री मोदी ने यह गल समाजिक न्याय ते शक्तिकरण राज मंत्री BL वर्मा वालों नशा मुक्त भारत बनाने की महत्ता ते लिखे एक लेख नूं सांझा करदिआं कही। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हरेक नागरिक नूं नशा मुक्त ते विकसित भारत बनाने की मुहिम में शामिल होने का सद्दा दिता। अपने लेख में श्री वर्मा ने कहा कि सरकार नशीले पदार्थों को भारत के नौजवानों के भविष्य और देश की तरक्की से जुड़े एक गंभीर मुद्दा मानती है। उन्होंने देश के हरेक नागरिक खास करके नौजवानों को नशिया के सेवन विरुद्ध एक राष्ट्रीय मुहिम का हिस्सा बनने का सद्दा दिता। गृहमंत्री अमित शाह ने अज नशिया खिलाफ़ एकजुट जंग का सद्दा दिता है। उन्होंने कहा कि नशे देश की सुरक्षा, समाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और साडे नौजवानों के भविष्य लिए एक वड्डा खतरा है। उन्होंने अध्यात्मक आगुआं, नौजवानों ते मावां नूं इस मुहिम विच शामिल होने की अपील की थी।
2: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इको सिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: नवी दिल्ली में नार्को कोआर्डिनेशन सेंटर की 10वीं उच्च पदरी मीटिंग में बोलदे श्री शाह ने कहा कि 2004 तो 2014 दरमियान लगभग 26 लाख किलोग्राम सिंथेटिक नशे जब्त किए गए सन। 2014 तो 2026 दरमियान यह मात्रा वध के 1,18,00,000 किलो तो वध हो गई। उन्होंने कहा कि अंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी विरुद्ध सरकार की निरंतर कार्रवाई दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि समय सिर जानकारी सांझी करन नाल सरकार नूं मामलों की प्रभावशाली ढंग नाल निगरानी करन अते जरूरी कदम चुकन विच मदद मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षणी कोरिया के अपने 2 दिन दौरे दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून नाल दुवाले संबंधों को मजबूत करने लिए व्यापक विचार वटांदरा किया है। दोहां आगुआं ने व्यापार ते निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा ते सुरक्षा, उभरदियां तकनोलॉजियां, स्टार्टअप्स, सभ्याचार

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, DRM 854 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगा हर्ट्स, FM बैंड 100.9 मेगा हर्ट्स, तो DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो की कड़ी ते 7:40 हो रहे हैं। लो हुण पेश है प्रोग्राम सब रंग।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।

हैं। मोहतरम सामईन, अभी आपने मुहर्रम की अहमियत और इमाम हुसैन की शख्सियत पर एक नज़्म समाअत फरमाई। लीजिए अब एक तहरीर पेशे खिदमत है जिसका मौजू है करबला का हकीकी पस मंज़र सही अहादीस और रिवायात की रोशनी में। आशूर का दिन एक जबरो इख्तियार के इम्तिहान का दिन था। आशूरा के दिन हर इंसान को इख्तियार था कि वो शैतान ठहरे या फरिश्ता बन जाए, इंसान रहे या हैवान। आशूर इंसानियत की हार जीत का मैदान था। आशूर में मौला हुसैन ने हुर्रियत का परचम लहराया और जिनके पास जहालत का उज्र बाकी था उन पर हुज्जत तमाम कर दी। मगर ऐसे लालचियों और दुनिया परस्तों को घेर कर जमा किया गया था जो हकीकत सुनने तक को तैयार न थे। इन अफराद ने बरोज़ आशूरा इंसानियत को घोड़ों के जुबों तले पामाल कर दिया और ये साबित कर दिया कि ये लोग इंसान के रूप में लाश खोर हैवानात हैं। इन लोगों ने तारीख़ की सबसे गिरी हुई हरकतें की हैं जो कि हज़रत आदम अबुल बशर के दौर से अब तक कभी ना हुई थी। मैंने अहादीस मुबारका का मुताला किया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक में तशरीफ़ ले जाने के महज 50 साल बाद ही करबला के मैदान में आले रसूल को शहीद कर दिया गया। जो नवासा के दोशे रसूल पर सवार होता था, जिसके लिए अल्लाह के रसूल सजदा लंबा कर देते थे, उसको बेदर्दी से मुसलमान कहलाने वालों ने ज़िबा कर दिया। हुसैन देख रहे थे कि मेरे साथ बहुत थोड़े आदमी हैं और ये 3 बर्रआज़मों पर फैली जमी जमाई हुकूमत है, मैं उसको बदल नहीं सकता, ना ही बदला जा सका। तो वो क्यों उठे जबकि लोग मना भी करते रहे? बज़ाहिर हालात ऐसे ही थे, उठने का कोई जवाज़ नहीं था, मगर ज़रूर ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से उन्होंने महसूस किया कि अब खामोश रहना इस्लाम पर जुल्म होगा। करबला का दिलखराश वाकया 10 मुहर्रम 61 हिजरी बमुताबिक 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को पेश आया। इससे कबल यजीद ने कूफा के नरम दिल और हक परस्त गवर्नर नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु को माजूल करके बदनाम ज़माना और ज़ालिम शख्स इब्ने ज़ियाद को गवर्नरी सौंप दी, जिसने उमर साद को फ़ौज का कमांडर बनाकर हुसैन का रास्ता रोकने के लिए भेज दिया। सानहा करबला को जंग कहना हरगिज़ बजा ना होगा। एक तरफ यजीदी लश्कर पूरी तरह मुसल्लह हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल और दूसरी जानब इमाम हुसैन और उनके अहले बैत और चंद दीगर साथी जिनकी मजमूई तादाद महज 72 के आसपास थी। अलबत्ता हक़ के मुतलाशी कुछ और जानिसार काफिला हुसैन में शामिल हो गए, फिर भी कुल तादाद 150 से ज़्यादा न थी, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग भी थे। साफ जाहिर है कि यह एक ज़ालिमाना और बुजदिलाना कार्रवाई थी। मगर आप यकीन जानें कि करबला को समझने के लिए जब कोई शख्स यजीद के दौर तक ही रहेगा उस वाक़े को समझ नहीं सकता। यजीद तो महज उस बिगड़े हुए निज़ाम का एक नुमाइंदा था जिसकी शुरुआत हज़रत हसन की खिलाफत राशिदा के बाद हो गई थी। जब अल्लाह के कानून को छोड़कर हुकूमत करनी शुरू कर दी जाए, नमाज़ें चलती रहें, रोज़े होते रहें, हज होते रहें, मगर कानून खुदाबंदी से जान छुड़ा ली जाए, ऐसी हुकूमत मुसलमानों की हो सकती है, इस्लाम की नहीं। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले आपके बड़े भाई सैयदना हसन अलैहिस्सलाम के गले में जहर टपका दिया गया। चूँकि जिन शरायत की बिना पर हज़रत हसन खिलाफत से दस्तबरदार हुए थे, उन शरायत की ज़र्रा बराबर भी पाबंदी नहीं की गई थी, इसलिए लोग डरते थे कि कहीं इमाम हुसैन क़याम ना कर दें और हमारी बनी बनाई हुकूमत और बना बनाया खेल बर्बाद ना हो जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने साफ फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा 30 साल है, फिर काट खाने वाली मलूकियत शुरू हो जाएगी। मगर इमाम हुसैन ने उस वक्त ये इख्तलाफी नोट लिख दिया और अपने खून से लिखा कि मुसलमान जो कर रहे हैं ये इस्लाम नहीं है, ये अमलुल मुस्लिमीन है, मैं इसको तब्दील नहीं कर सकता। मगर जैसे एक जस्टिस अपना इख्तलाफी नोट लिख देता है कि ये काम गलत हो रहा है, लिखने वाला कौन था? जो नवासाए हुजूर अलैहिस्सलाम था। सामईन इकराम, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आपको नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बाग के दो फूल कहा है। आपने अपने नवासों को जन्नती नौजवानों के सरदार करार दिया है। और एक हदीस में आया

0: शहीद कर दिया गया। पानी पर पहरे लगा दिए गए। तपते सहरा में इस मुख्तसर जमात ने सब्र इस्तकामत और कामिल ईमान का मिसाली नमूना पेश किया। हुसैन और उनके साथियों ने करबला की बंजर ज़मीन को अपने मुकद्दस खून से जरखेज़ कर दिया। ना डगमगाए कभी हम वफा के रस्ते में, चराग हमने जलाए हवा के रस्ते में। क़याम हुसैन दरअसल इस्लाम के नाम पर चलाए जा रहे तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ एक जिहाद था। खिलाफत राशदा की बहाली के लिए जद्दोजहद थी। जो अफराद बाकी बचे करबला से, उनको बाज़ारों में घुमाया गया और लोगों से कहा गया कि ये बागी हैं। सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक की तजलील की गई। इन लोगों ने वो जराइम किए कि जिन्हें किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जा सकता। कूफा के जिन बुज़ुर्गों ने हज़रत हुसैन को दावत भेजी थी और खतूत लिखे थे, बाद में उन्होंने तवाबून के नाम से एक तहरीक चलाई और कातिला ने हुसैन के ख़िलाफ़ जहाद किया। हुसैन असल में एक इनकलाब का नाम है और सैयदना हुसैन ने अपने खून से वो तहरीर लिखी ताकि लोग जिससे जान सके कि खिलाफत का असल तसव्वुर क्या है। मक्का से कूफा के लिए इमाम हुसैन ने जब इरादा किया तो आपको वहाँ लोगों ने रोका और ख़ास तौर पे मोहम्मद हनफिया ने इस मौके पर कहा कि अहले मक्का और आज़मीन हज आपके हज के मौके पर और 10 ज़िलहिज्जा के सिर्फ 2 दिन पहले मक्का छोड़ने पर हैरान हैं। इमाम हुसैन ने जो बातें जवाब में इरशाद फरमाईं वो अहले हक के लिए रोशनी का मीनार हैं। आपके अल्फाज थे, मैं उम्मत को फिर से अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की तरफ वापस लाना चाहता हूँ। मैं अपने नाना के दीन का भूला हुआ सबक याद दिलाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने यजीद जैसे जालिम हुक्मरान की बैत से इनकार करके इस्लामी इकदार, शुराइयत और अदल की हिफाजत की। इस वाक़े ने यह पैगाम दिया कि जुल्म के आगे सर झुकाना जायज़ नहीं, चाहे इसके लिए कितनी ही कुर्बानियाँ क्यों ना देनी पड़ें। इसलिए करबला की तारीख आज भी हर उस शख्स के लिए रहनुमाई है जो हक और इंसाफ की तलाश में है। ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है, कि खौफ बस खुदा का है। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हुण तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम सबरंग, जिस विच मुहर्रम दे मौके ते मनकबत अते तहरीर बारे सुन रहे सी मुहम्मद अफशर, माफ करना, अशरफ सदीक होना खुलो। आहुन समात फरवाने चन गजला।

0: वक्त आ गया है, छोटी सी ब्रेक दो, मुड़ तो फिर हाजिर होने आ।
1: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ये परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.cybercrime.gov.in ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
1: जी हाँ, प्रोग्राम जिंदगी हसीन है लैके फिर मुड़ तो हाजिर हो गया। गल्लां बातां चल रही ने, गीत चल रहे ने, संगीत चल रहे, दिल मिले हुए ने। इस वेले साडे स्टूडियो की घड़ी ते 8:17 हो रहे हैं। लो जी, हुण गल करदे हां मुस्कुराहट की ताकत की। साडे जिंदगी दे विच मुस्कुराहट की अहमियत कितनी है। एक सिंपल जी छोटी जी मुस्कुराहट, ना कोई खर्चा ना कोई पाशा, पर दिलां नूं जोड़ दिंदी है। तुहाडी एक मुस्कुराहट किसे दा दिन बना सकती है। कई बार किसे नूं सिर्फ एक महसूस करवाउण लई कि तुसीं कल्ले नहीं हो, तुहाडे नाल असीं खड़े हां, सब तो वड्डी मदद हुंदी है। बस तुहाडा काम कुछ नहीं है, तुसीं मुस्कुरा के उहदे नाल खड़े होना। सामने वाला भावें तुहानू बुलावे ना बुलावे, पर तुहाडी मुस्कुराहट उहदा दिन बना सकती है। जिंदगी की खूबसूरती इस गल विच नहीं हुंदी कि साडे कोल की है, सगो इस विच है कि असी जो कुछ है, साडे कोल कुछ भी है, जो कुछ भी है, उसनू असी किवें जी रहे। जी हाँ, जिंदगी नू हसीन बनाउणा है तो साडी सोच भी अपरोच भी बिल्कुल सकारात्मक तरीके नाल होनी चाहिए है। लो जी, इस दे नाल ही तुहाडे सामने पेश है अगला गीत। आनंद माणो जी इस गीत का।

जी हाँ, प्रोग्राम जिंदगी हसीन है चल रहा है और तुसी गीत सुन रहे हो, संगीत सुन रहे हो, नाल दे नाल गल्लां बातां असी कर रहे हैं। प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दे विच असी अगली गल करते हैं कि जिंदगी दे विच हसीन अगर असी जिंदगी नूं करना तो सानू कंपेयर करना, अपनी तुलना किसी नाल करनी बंद करनी पैगी।

0: जी हाँ, जिंदगी हसीन है प्रोग्राम चल रहा है और हुण वेला है थोड़े जे छोटे जे ब्रेक दा, फिर मुड़ तो हाजिर होने हैं थोड़ी देर बाद।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज ते।
0: जी लो जी, हुण जिंदगी हसीन है प्रोग्राम दे विच बहुत ज़्यादा समा नहीं रह गया, कुछ पल रह गए थोड़े नाल। आओ अज तो असी अपनी जिंदगी विच की बदला लिया सकते हैं। शुरुआत आप अपने तो ही करते हैं। पांच छोटे जे वादे अपने नाल करने हैं। पहला वादा, हर रोज़ घट्टो घट एक बार दिलों हसो। ये अपने वादा कर ही लो, अपने आप कह दो, भावें जो शीशा सामने है या अपने किसी डायरी उत्ते पन्ने उत्ते लिख के रख लो कि मैं हर रोज़ अपने नाल घट्टो घट एक बारी दिलों हसांगा। अपने नाल खुश रहो, मुस्कुराओ। हसना मतलब ये नहीं कि अपने आप की बेइज्जती करना, अपने आप नाल मुस्कुराना, हसना, दिलों हसना। दूजा वादा, अपने परिवार नाल कुछ समा जरूर बिताना। ये दूजा वादा अपने नाल करो। तीसरा वादा, मोबाइल तो वध लोका नाल खुद गल करनी है, जाके गल करनी है, बैठना है, टाइम स्पेंड करना है, ना कि फोन चलाना है। फोन ते गल करन नालों समा कढ़ो, समा कढ़ के लोका नाल बैठो, तजर्बा मिलेगा। चौथा वादा, हर रोज़ किसे एक व्यक्ति दी जरूर मदद करनी है। अगर थानू डेली रूटीन दे विच खब्बे सज्जे कितने भी कोई इंसान मिलता है जिदी तुसी मदद कर सकते हो, जरूर समा कढ़ के उहदी मदद करो। तो अखीरला वादा जिहड़ा तुसी अपने नाल करना है कि सौण तो पहला तीन चंगीआं चीज़ां जिहड़ीआं तुहाडे नाल बीतीआं ने अज दे पूरी रूटीन दे विच, पूरे दिन दे विच जिहड़ीआं तीन चीज़ां तुहाडे नाल बीतीआं ने उहनूं याद करना, उहनूं याद करके महसूस करना कि

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8:45 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के

0: सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। ऑपरेशन अमिस्तार के अंतर्गत उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत
1: में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दी थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
2: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
1: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।

0: दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकीन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। यीशु के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत मुहिम जन भागीदारी तो प्रेरित एक लोक लहर बन गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अज नवी दिल्ली विच नारको कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं उच्च पदरी मीटिंग विच बोलदिया नशे खिलाफ एकजुट जंग का सद्दा दिता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिणी कोरिया के विदेश मंत्री नाल दुवल्ले संबंधी नूं मजबूत करने लई व्यापक विचार वटांदरा किया है। पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम डिवीजन ने पिछले एक साल दौरान साइबर धोखाधड़ी नाल जुड़े 63,749 बैंक खातों पर रोक ला दी है। सूबे भर च जलंधर कपूरथला और हुशियारपुर धोखाधड़ी तो सब तो वध प्रभावित जिले ने। पंजाब के महिला ते बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने एक विशेष सम्मेलन दौरान बच्चों के सर्वबंदी सर्वपक्षी विकास लई छोटे कदम वड्डा विकास मुहिम की शुरुआत की थी। जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गैर कानूनी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के इल्जाम विच तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के सारे सरकारी दफ्तर संस्थावां के समय को पहली जुलाई तो पहली वांग सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक बहाल कर दिता है। भारत आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप विच सोने के 7 तगमिया नाल तमगा सूची विच चोटी ते रहा। FIH प्रो लीग हाकी विच अज लंडन विच राती 10:30 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान नाल होवेगा। चंडीगढ़ तीजी एशियन रिले चैंपियनशिप 2027 करवाउण लई तैयार है। पंजाब दे राजपाल अते केंद्रीय शास्त्र प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अज चैंपियनशिप फ्लैग हासिल कीता। एसन अज दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर और DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का एक जलंधर केंद्र है। तुसी साढ़े प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साड़ी स्टूडियो की कड़ी ते 10:03 हो रहे हैं। लो हुण पेश है प्रोग्राम सुर छनकार।

0: स्क्रीन नेटवर्क सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हंसी हाय तो फंसी मुहम्मद रफी की आवाज़ तो सुनिया जी ये बड़ा ही मेरे दिमाग च आया कि ये ना बड़ा शरारती जिहा गीत है, ये किवें लफ्ज़ फड़ के ते अगे तो अगे एक खामी जी भरी तो इश्क मुहब्बत की बात जिहड़ी है वो पाई। तेरी फोन कॉलर जुड़ गए ने साढ़े नाल अगले तो मैं पर एक दो सुनेहे वट्सएप के जरिए पहुँचे ने साढ़े को जी उना दे नाम जरूर तो जरूर सांझे कर देव। मैं इस गेट नाभा तो सोमदा ज्योति राणी कैरव तो गुरमन जी भी जुड़ चुके हैं तो मंडी हरजी राम मलोड़ तो नथू राम शर्मा ललित शर्मा इंदराज शर्मा सुरेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं जी। स्वागत तुहाडा प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत प्रोग्राम दे विच शामिल हो रहे हैं जी। ताज मुहम्मद अंसारी जी गुलाम साबिर राही महराज जहां भी जुड़े ने आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड तो हरजिंदर छिंदा जसवीर जसी सीता और गीता भी जुड़ चुके हैं जी। बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल भेज रहे ने पिंड थाणा बठिंडा तो जी लिखते हैं जी खुश रहो खुशियां वंडो वाह जी। बड़ी ही संखेप जिहा इन्हां दा सुनेहा ते बड़ी बड़ी ही जड़ी है वो जरूरी गल समझा गए ने कि खुशी खुश रहो ते खुशियां वंडो। जैसे जी असी होवांगे वैसियां ही गल्लां वैसे ही विचार असी अपने आस पास के माहौल दे विच वंडांगे। टीरी मल्होत्रा रितिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह जी ते डॉक्टर अमनदीप भी जुड़े ने जी कालका तो सैक्टर माफ़ करना सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो कालका तो शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज भी जुड़ गए हैं ते साढ़े अगले फोन कॉलर जुड़े ने कर दें उन्होंने गल। स्वागत जी बहुत बहुत तुहाडा।
1: हेलो
0: जी बहुत बहुत स्वागत तुहाडा प्रोग्राम च
1: जी। नमस्कार
0: जी जी कौन ते कित्थों गल कर रहे हो?
1: जी बिट्टू बोल रहा हूं जी। नमस्कार
0: जी जी बहुत बहुत स्वागत।

0: प्रोग्राम चल रहा जी स्वागत एक बार फिर तो करदा हाँ सब का स्वागत साढ़े अगली फोन कॉलर जुड़े ने जी करते हैं उन्होंने स्वागत स्वागत जी बहुत बहुत प्रोग्राम दे विच।
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी कौन थे कितों गल कर रहे हो? जी स्वागत थोड़ा प्रोग्राम स्वागत विच दसो जी जी हाँ जी हाँ जी दसो जी केड़ा गीत सुनोगे? कुलदीप मानक दी कली। लो जी ठीक है जी फिर तुहाडी फरमाइश कर रहे हैं पूरी हीर सुनदे हैं जी फिर कुलदीप मानक दी आवाज़ च। शुक्रिया तुहाडा बहुत बहुत प्रोग्राम च शामिल होने जी।

0: जी बिल्कुल। अखीर ते डोर ता फेरी रब ते छड्डी जांदी है। ते गुरदास मान जी भी यही कह रहे ने जी कि बनो दुनिया दा सच्चे पातशाह वाहगुरु जाने उस दियां ओही जाने। स्वागत करते हैं साडे अगले फोन कॉलर दा
1: जी।
0: प्रोग्राम सत श्री अकाल जी। राजू जी की हाल

0: चल
1: बहुत वधिया ने सर्दियों में राजी बोलता
0: जी
1: गाना
0: जी
1: बहुत वधिया जी
0: बिल्कुल
1: गरदास मान दा मामला गड़बड़ फिल्म दा
0: जी जी तुहाडी आवाज़ पछाण ली आपां ते अज काफ़ी देर लाती कि मैं ही देर की
1: नहीं जी बहुत 11 बजे दा लग्या मामला
0: ओहो चलो जी लग गया हुण तां फोन ते दसो केड़ा गीत सुनाइए फिर
1: सतविंदर बुग्गा दा गीत सुनो
0: सतविंदर बुग्गा दा गीत कोई भी या तुहाडी मर्जी दा दसो
1: आओ नचिए जी
0: चलो ठीक है जी लो जी सुनदे हैं फिर तुहाडी फरमाइश ते अगला गीत शुक्रिया
1: धन्यवाद जी
0: फोन करन दे लई ते इन्ना लंबा इंतज़ार तुहानू करवाया जी उहदे लई मुआफ़ी भी पर जी मेरी कोशिश कि मैं व्हाट्सएप ते फोन लाइन दे दोवें फरमाइशां नू समय समय ते पूरा करां बराबर तवज्जो दोवां नू दवां जी ते लो सतविंदर बुग्गा दी फरमाइश ते सतविंदर बुग्गा दी आवाज़ च सुनदे हैं जी ये गीत ते फरमाइश आई राजू जी दी

इसी प्रोग्राम स्वागत सारा धन्यवाद प्रोग्राम दी इथे इस गीत दे नाल कर रहे हैं समाप्ति डीटीएच दी पंजाबी प्रसारण सेवा दा जलंधर केंद्र तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी पंजाबी

तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी चिर हुआ देखे सारिंग पाणी तन सुदेश जहां तू वस्या मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। जीव रूप स्त्री हमेशा प्रभु दे दर्शन दीदार दी त्रिहाई हुंदी है। जीव रूप स्त्रियां प्रभु दे संपर्क विच रह के उसकी महिमा बयान करना ही लोचदियां हन। भगत रविदास जी उस अकाल पुरख के चरणों विच बेनती करते ने कि हे प्रभु जीओ, तुसी दयालु हो, असी दीन हाँ, कृपा करो, मैं बहुत जन्मों तो आप जी तो विछड़िया होया हाँ, मैनू अपने दर्शन दीदार बख्शो। आप अबोल क्यों हो, मैं आप जी तो सदके जांदा हाँ। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या की जाए, बचनी तोर मोर मन माने, जन कौ पूरन दी जाए। सरवण करदे आ भाई गुरमेल सिंह ते उन्हां दे रागी जथे वालों गायन किया होया ये शब्द।

हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या की जाए। बचनी तोर मोर मन माने, जन का पूरन दी जाए। इस शब्द का गायन किया सिपाही गुरमेल सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने, जिन्हों गुरमुख जना उस प्रभु की प्रीत की प्यास हुंदी है, वो एक पल का विछोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करते। उन्हां दी हमेशा यही बेनती हुंदी है कि हे प्रभु जीओ, साडे वल मुख मोड़ो, दर्शन दिओ। आप जी दी करवट नालों बेहतर है कि साडे शरीर ते आरा ही चल जाए। हाओ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। सरवण करदे आं भाई हरचंद सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ए शब्द।

0: हाउ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोका काहे कौ मारे। इस शब्द का गायन किया सिपाही हरचंद सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बलविंदर सिंह।
1: ये पावन शब्द राग आसा अंदर भगत कबीर जी का उचारण किया होया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे मुबारक अंग 484 उपर अंकित है। भाव है, हे प्यारे प्रभु, मैं तेथों

हर जियो सदा तेरी शरणाई, जो पावै त्यो राखो मेरे स्वामी, ए तेरी वडियाई। इस शब्द का गायन किया था डॉक्टर जगीर सिंह होरा।

गे मात तरलोचन चेत भगत कबीर है जाने रोक मांगद कर तू राम जंपो नित पाई।

जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखे शरण परे ते उबरे छोड़ जंपर के लिखे पौथ पाए भरपूर हृदय उचरे करतारे गुर कहो।

0: तिन दुख दरिद्र पर हर परे गुर अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरिद्र पर हर परे।
1: चित चितों अर

गन का पढ़त पूरे ते काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए, राखो दास पाठ की लाज, श्री सतगुर सो प्रसन्न।

गुरु समर्थ गह करिया त्रौ बुद्ध समत समारन को फुन त्रम तुझा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन को मथुरा जन जान कही जी साच सो और कसु न बिचारन को हर नाम बोहित बडो कल मैं पव सागर पार उतारन को।

पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराई सी सौ सेवक सेवा करे सुन हुकम मनाए सी हुकम मने होवे प्रमाण ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनु चंदिया सो फल पाए सी तां दरगह पैदा जाए सी तां दरगह पैदा जाए सी।

पौड़ी सब को आखी अपना जिसनाई सोचन कड़ी है किता पु अपना पहले खा संडी है जा रहना नहीं है तो जागता कायद गर्भ हंडी है मंदा किसना खेप।